0: व्यावसायिक तालिम परिषद सिटीभिटी को आंगिक संस्था तथा बागमती प्रदेश के नमूना शिक्षालय एस दिवाकर स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय माणिछ चितवन में एसईई एसएलसी तथा टीएसएलसी उत्तीर्ण कर विद्यार्थी का 3 वर्ष डिप्लोमा कार्यक्रम में भर्ना खुल्यो।
1: अध्यापन होने विषय डिप्लोमा कृषि तर्फ पशु विज्ञान डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा फार्मेसी
2: 3 वर्ष को शिक्षण शुल्क ₹50,000 मात्र
3: सीट सीमित छ आजै भर्ना गरी सीट सुरक्षित गर्नुहोस्।
4: थप जानकारीका लागि दिवाकर स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय माडी छ हरिनगर चितवन 98550 39122 र 98550 39123।

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 5570 7061 र 98 5570 7053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4493 580 र 98 5570 2640
3: It's 11 o'clock. अहिले 11 बजेको छ.
4: 11 बज्यो.

0: देश टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5569 5553 98 550 77 061 र 98 550 77 53
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4493 580 र 98 550 26 440
0: It's 12 o'clock. अहिले 12 बजेको छ।

0: इस समय सूचक का साथमा
1: दक्षिण कोरियामा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 53 69 98 550 77 061 र 98 550 77 053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 93 440 493 580 र 98 550 26 440
3: It's 1 o'clock अहिले 1 बजेको छ।

0: समय सूचक का साथ मा
1: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5569 53 98550 77061 र 98550 77053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4493 580 र 98550 26 440
3: It's 2 o'clock अहिले 2 बजेको छ

0: समय सूचक का साथ मा
1: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 61 र 98 5570 53
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4493 580 र 98 5570 26 440
3: It's 3 o'clock. अहिले 3 बजे को छ।
4: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो।
5: राष्ट्रको शान किसान।
4: A complete piping solutions.

0: समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 056-5359-53 98-550-77-061 98-550-77-053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 056-493-440 493-580 र 98-550-26-440
3: इट्स 6 o'clock अहिले 6 बजेको छ
4: किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
5: राष्ट्र को शान किसान

0: हेपिन के मेल छोरालाई
1: गीता हेप्न पाइन्छ
0: वोट नि
1: बारिस के
2: हल्का ग्यास
0: उज्जा मुर्दार
3: हर राम्रो मान्छे।